0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: Ye hai Radio Dilbar. आपकी दिल की आवाज, आपकी दिल की आवाज।
3: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
4: बोल मेरे बकरे, खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां?
5: चलेगा।
4: ओ मेरे बकरे, गाएगा क्या? उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बाना। अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
6: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार हो,
7: ईद की खुशियाँ मुबारक।
8: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
9: बकरा ईद मुबारक।
10: जब हर तरफ खुशबू हो, जब हर चेहरा मुस्कुराहटों से चमक रहा हो, जब हाथ ईदी के लिए आगे बढ़ रहे हो, जब घरों में मेहमानों की चहल पहल हो, तो समझ लो कि ईद आ गई है। रेडियो दिलबर एफएम 94 स्वाबी कहता है, मुस्कुराहटों, खुशबुओं और मोहब्बतों के साथ ईद मुबारक। ईद

फन टॉक और सुनने वालों के प्यारे पैगामात। सो डोंट चेंज द डायल, स्टे ट्यून्ड टू दिलबर एफएम 94 स्वाबी, द वॉइस ऑफ स्वाबी।

0: ये है खुशियों की आवाज, ये है ईद का जश्न।
1: ईद के दिन जल्दी ना करें, जिंदगी सबसे कीमती तोहफा है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, मोटर बाइक पर हेलमेट पहनें और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करें ताकि ये ईद खुशियों भरी हो, हादसों भरी नहीं। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से पेश किया गया। ईद खुशियों का नाम है, खतरनाक खेल का नहीं। हवाई फायरिंग किसी मासूम की जान ले सकती है और आपके लिए कानूनी मसाइल पैदा कर सकती है। अपनी और दूसरों की खुशियों को महफूज बनाएं, हवाई फायरिंग से गुरेज करें। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया। नए कपड़े और महंगे खानों के साथ किसी यतीम या जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सबसे बड़ी खुशी है। ये पैगाम बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तावन से पेश किया गया। हमसायों के आराम का ख्याल रखें, खुशियां बांटें, शोर ना फैलाएं, ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाना और शोर शराबा करने से दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों के सुकून का भी ख्याल रखें। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तावन से पेश किया जा रहा है। ईद खुशी और पाकीजगी का पैगाम देती है। नमाज ईद के बाद पार्कों और खुले मैदानों में कचरा ना फैलाएं और अपने माहौल को साफ सुथरा रखें ताकि सबके लिए ये दिन खुशगवार हो। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया। बच्चों को आतिशबाजी और पटाखों से दूर रखें। खुशियां महफूज हों तो ईद यादगार बनती है। आतिशबाजी और पटाखों से हाथ जल सकते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को इन खतरात से दूर रखें और एक महफूज ईद मनाएं। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।
2: ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये छोटे बड़े होशियार हैं, ये दिफाए वतन का हर महाज और मोर्चा संभालने को तैयार हैं। ये हमारा आज हमारे कल के उजाले हैं, ये पाकिस्तान के रखवाले हैं, पाकिस्तान के रखवाले।

नमाज से कजा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए।

0: बोल मेरे बकरे, खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे, गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
0: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान होने से।
2: प्रॉपर्टी अटक शहर, तौसीफ अहमद खाकसार और मुकम्मल टीम लखवाना, टूल मीनावाल दगट अख्तर गटे खुशाले, डेरे डेरे मुबारक शाह। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर, कम की चिबताओ पिंजम मरले, लस मरले, दयो कनाल दिर्शु मरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और कुरुन दपारा प्लाटून मिलावेगी और कम छिप आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवलिश है। कुशादर उडुना द उबो सहूलत, खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पकी हम मौजूद दी। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर, मोबाइल नंबर 0315-6386-080।
0: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
3: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए
2: खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे, द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफना, टूल मीना वालों ता द गट अख्तर गटे खुशाले, डेरे डेरे मुबारक शाह। खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और पतीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कभी। बेहतरीनों और जायकेदार खुराकनों वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी, मोबाइल नंबर है दे 0336-30-34-636।
4: سپگمئی اختار شو خوشحالی شوا سوابئی کی روخنائی شوا بیا د جشن تیاری شوا
2: او پتین تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کبھی دا بہترین او ذائقہ دار خوراکنو واحد مرکز خان دربار ریسٹورنٹ امبار انٹرچینج سوابی، موبائل نمبر ہے دے 0336-30-34-636۔
4: سپگمئی اختار شو خوشحالی شوا۔

0: बच्चों को आतिशबाजी और पटाखों से दूर रखें। खुशियां महफूज हों तो ईद यादगार बनती है। आतिशबाजी और पटाखों से हाथ जल सकते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को इन खतरात से दूर रखें और एक महफूज ईद मनाएं। ये पैगाम आपके लिए बेला डोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।
1: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स ले तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुलरहमान प्लाजा सवाबी मुंगसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट नु लपारा खपस मोरे एतमाद सरा राबिता उकड़े CO शाहिद खान मोबाइल नंबर 03998826239।
2: یو پختنه ده نن مو اختر څنګه تیریږي غواړی چې خوشحالی مو دو برابر شي نو واوری دلبر FM سلور نوی سوابی د اختر ځانګړي پروګرامونه دلبر FM سلور نوی سوابی ستاسو د خوشحالی ملګری دلبر FM سلور نوی سوابی

0: सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
1: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी, द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी, द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना तूल मीना वालों ता दगट अख्तर घटे खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह द दी दजीब कालू वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काली के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ा बल वाड़े नु पता याद साथे शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
2: ये है खुशियों की आवाज, ये है ईद का जश्न,
3: ये है खुशियों की आवाज, ये है ईद का जश्न,
2: ये है मौसीकी और मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज। यस, द सेलिब्रेशन इज ऑन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी।
3: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी,
2: जहां ईद के इस मौके पर जारी है नॉन स्टॉप ईद एंटरटेनमेंट। Great music, fun talk और सुनने वालों के प्यारे पैगामात। So don't change the dial. Stay tuned to Dilbar FM 94 Swabi, the voice of Swabi.
3: Dilbar FM 94 Swabi, the voice of Swabi.

0: ये है खुशियों की आवाज, ये है ईद का जश्न।
1: अरे कसाई आ गया, कसाई कसाई आ गया।
2: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
3: बकरा ईद मुबारक।

0: 455 में सेकंड कॉलर आप दिशो बगूरम जी सुकरा जी औदकम जैन अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अख्तर बनादी मुबारक शाह।
0: खैर मुबारक, खैर मुबारक जमा ददर पर इतास दा हम मुबारक भी और देर ज्यादा मनना शुक्रिया। खुशाला औबाद और गरंदी रातों से।
1: अमीन रस्ता।
0: बिल्कुल अमीन अमीन। कुर्बान दारा तो हुए छे नामा अफसर खान खबर मीनावाल बहुई का
1: ना
0: बिल्कुल अफसर भाई चिकम दे बिल्कुल पखपल नुम दादापले नाकली न संग तो भाई ले पैसे वर कड़ी दे संग चल ले
1: अफसर
0: खान दादा तो
1: प्रोग्राम
0: खुद यूल सुनो वाले दो बजो पूरे माँ करे हो
1: ना
0: आओ का ना मुबारकी जान सर नो वेलकम प्रोग्राम था बिल्कुल रात देश
1: प्रोग्राम था सर नावरे वक्त नास्तो मो बस दामी तारी चाह बनी और नीचे बराजम नो
0: नुमा तो सब बताओम हुए वहाँ
1: रेडियो
0: की टूकड़े माँ को तीर गुल दर्ज माँ चिकम प्रोग्राम हो गुल पर अजमा दगा अनाउंसमेंट करो चेहरा प्रोग्राम लास्ट की अख्तर की स्पेशल खबरों में नो रेडियो की एनी टाइम अगर जरा ले शमा
1: वाओ ताऊ हो बस मंगल का मसरूफ
0: बस भी वपा खला किया कने यार
1: ना नाम वाला भी वपा तो ता मंगल का समझ ले
0: जरा ज्यादा मनना शुक्रिया अदा सीधा छे नूर मीनावाल बहम राजी और बला मीनावाल बे इंतजार कइनो के चाता मुबारक ली गए या दवा सलाम पैगाम ले के नो ले गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बस ता पर स्पेशल सलाम انور طول اور ریزن کو تازہ غذا ہے اور مارگرے میرے راسن واغا اور اتخان نو میرے غتا بس فجر جو لو سلام
0: وعلیکم سلامنا ڈیر از جاتا مننا شکریہ خوشحال رہتا اسے افسر خان اور اسلام

0: पर 938 280 495
1: चाचा
0: चूस रेडियो ट्यून कड़ी वे और रेडियो सिटे लगौली वे बिल्कुल हर गली फखर अगला सुस्त मशहूर।

0: बोल मेरे बकरे, खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे, गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
0: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान होने से।
2: सेकंड प्रॉपर्टी अटक शहर द तौसीफ अहमद खाकसार और द मुकम्मल टीम लखवाना तुल मिनावाल उता द गट अख्तर गट खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चबताओ उस्ता पिंजा मरले लस मरले दयो कनाल दीर्श मरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और कुरुन द पारा प्लाटून मिलावेगी और कम छिप आसान अकसात और कैश तरह तासु तरला से कवलिश है कुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पके हम मौजूद दी। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080।
0: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
3: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार
2: खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सोबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफना टोल मीना वालों ता द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और पतीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कवि द बेहतरीनो और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सोबे मोबाइल नंबर है 0336-30-34-636।
4: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। साद ट्रेवल दुरहमान प्लाजा सोवाबी मुंगसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट लपारा खपज मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सीओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629।
5: अरे कसाई आ गया।
6: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
7: बकरा ईद मुबारक।
4: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह। द दीदा जीब कालू वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काली के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ा बोल वाले दो पता याद साथे शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
8: आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।

0: बोल मेरे बकरे, खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे, गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
0: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान।
2: बच्चों को आतिशबाजी और पटाखों से दूर रखें, खुशियां महफूज हों तो ईद यादगार बनती है। आतिशबाजी और पटाखों से हाथ जल सकते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को इन खतरात से दूर रखें और एक महफूज ईद मनाएं। ये पैगाम आपके लिए बेला डोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।

0: ईद के दिन जल्दी ना करें, जिंदगी सबसे कीमती तोहफा है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, मोटर बाइक पर हेलमेट पहनें और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करें ताकि ये ईद खुशियों भरी हो, हादसों भरी नहीं। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से पेश किया गया।
1: द सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर द तौसीफ अहमद खाकसार और द मुकम्मल टीम लखवाना टूल मीनावाल दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबताओ पिंजम मरले लस मरले दयो कनाल दिर्श मरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और कुरुन दपारा प्लाटूना मिलावेगी और कम छिप आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवले शे खुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पके हम मौजूद दी सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080।
0: ईद खुशी और पाकिजगी का पैगाम देती है। नमाज ईद के बाद पार्कों और खुले मैदानों में कचरा ना फैलाएं और अपने माहौल को साफ सुथरा रखें ताकि सबके लिए ये दिन खुशगवार हो। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया। ईद के दिन जल्दी ना करें, जिंदगी सबसे कीमती तोहफा है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, मोटर बाइक पर हेलमेट पहनें और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करें ताकि ये ईद खुशियों भरी हो, हादसों भरी नहीं। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से पेश किया गया।
2: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
3: इस तरह की चटपटी बात हो जाए।
0: हमसायों के आराम का ख्याल रखें, खुशियां बांटें, शोर ना फैलाएं, ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाना और शोर शराबा करने से दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों के सुकून का भी ख्याल रखें। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तावन से पेश किया जा रहा है।
1: खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफना टूल मीना वालों ता द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और पर तीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कभी द बेहतरीनो और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है दे 0336-30-34-636।
0: ईद खुशियों का नाम है, खतरनाक खेल का नहीं। हवाई फायरिंग किसी मासूम की जान ले सकती है और आपके लिए कानूनी मसाइल पैदा कर सकती है। अपनी और दूसरों की खुशियों को महफूज बनाएं, हवाई फायरिंग से गुरेज करें। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।
1: सात इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स सात इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह सात ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुलरहमान प्लाजा सवाबी मुंगसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकटों लपारा खपस मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े CO शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629।
4: सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
1: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह द दीदा जीब कालू वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काले के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ावल वाड़े दो पता याद साते शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
5: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
6: बकरा ईद मुबारक।

0: संग जी
1: गॉड गिफ्टेड आवाज,
0: बिल्कुल गॉड गिफ्टेड।
2: खबरे तो बचीर राजी,
0: बिल्कुल जो हम दीबुदा सॉन्ग और यूंग बदले का मतलब दा लगे दमो को सही दा फखाई दा कहना नहीं को
2: कड़े
0: देर खस्ता
2: उस चेजान राटो लवमा
0: संग जी
1: गॉड गिफ्टेड आवाज,
0: बिल्कुल गॉड गिफ्टेड।

0: सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
1: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी, द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी, द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर घटे खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह दीदीब कालू वाहिद मरकज द क्वालिटे और वजन जिम्मे सरा काली के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ावल वाले नु पता याद साते शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
2: अरे कसाई आ गया, कसाई कसाई आ गया।
3: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं।
4: बकरा ईद मुबारक।

0: बोल मेरे बकरे, खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे, गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
0: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान होने से पहले।
2: सुगमई इख्तारश व खुशहाली शुआ, सवाबई की रोखनाई शुआ, ब्याह द जश्न तैयारी शुआ, शोरो द अख्तर मुबारक शुआ। खुशहालियाने रेडियो दी सवाबई सरा वो मार।

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: नए कपड़े और महंगे खानों के साथ किसी यतीम या जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सबसे बड़ी खुशी है। ये पैगाम बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलवर FM 94 स्वाबी की तावन से पेश किया गया। ईद खुशियों का नाम है, खतरनाक खेल का नहीं। हवाई फायरिंग किसी मासूम की जान ले सकती है और आपके लिए कानूनी मसाइल पैदा कर सकती है। अपनी और दूसरों की खुशियों को महफूज बनाएं, हवाई फायरिंग से गुरेज करें। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 स्वाबी की तरफ से नशर किया गया। हमसायों के आराम का ख्याल रखें, खुशियां बांटें, शोर ना फैलाएं, ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाना और शोर शराबा करने से दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों के सुकून का भी ख्याल रखें। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 स्वाबी की तावन से पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: Music and information station 94.

ओके जी बराल पलगु सातुनुखी जमंग द चार सदी द चैनल दलार हुम दगा आवाज ओनेर के दलवाल दे द चार सदी द चैनल हुम जमंग गग जगम दे अगो प मंडो मंडो बंदे द खेरा बिल्कुल ओनेर के दलवाल दे ओ यकीन जो उस जमंग आवाज दग दे प चार सदी चैनल बने हुम ओनेर शो टूल चार सद वालो था डेल स्टोरी मशी प खेरा ले हर कले शरागलास वेलकम और मोस्ट वेलकम और दुआ मैं दोबारा रहता हूं مجھے دوبارہ رات آئے گا یعنی خلق کو دعوائے مجھے زمان پروگرام شروع شروع جی

0: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
1: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएं।
2: खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफना टूल मीना वालों ता द गट अख्तर गट खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और तीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कवि द बेहतरीन और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है 0336 30 34 6।
1: ईद और हम आपके साथ साथ।
3: नए कपड़े और महंगे खानों के साथ किसी यतीम या जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सबसे बड़ी खुशी है। ये पैगाम बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलवर FM 94 सवाबी की तावन से पेश किया गया।